मैं गम कर मैं परेशी जी ऐसे जी बोले मुरुकुन वो मंच अब हम आपको ना मार की मंच बाबा मार रीड ऐसे गए वो यार.